अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में आने वाले चुनाव में अपनी हार को देखते हुए आज बड़ा ही साजिश भरा एक बयान दिया और हिंदू सिखों को बांटने का और दंगे कराने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्वीट में कहा, ईडी हिंदू व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसका मकसद क्या है? जैसे उन्होंने दिल्ली में कहा था कि यमुना जी के अंदर बीजेपी ने जहर डाल दी ताकि आम आदमी पार्टी के वोटर पानी पी के मर जाएं, इस तरह का दंगा भड़काने की उन्होंने दिल्ली में चुनाव में भी कोशिश की थी और अब पंजाब में भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं वहां की पंजाब पुलिस की और डीजीपी से, तुरंत अरविंद केजरीवाल जी

0: और जिन्होंने इस ट्वीट को फॉरवर्ड करके भगवंत मान जी जैसे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके आगे चलाया है, इनके ऊपर दंगे भड़काने, एक शांतमयी प्रदेश के अंदर आग लगाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
1: हिंदू व्यापारी जो हैं वो सब समझते हैं, पंजाब को इन्होंने लूट लिया, पंजाब को इन्होंने खत्म कर दिया जो मौजूदा सरकार है। आप नशे की बात करते हैं, चिट्टे की बात अभी कर रहे थे, तो चिट्टे की बात और नशे की बात इनके खुद आप क्या करते हैं, स्टेजों पे जाकर, असेंबली में जाकर, वो आप किसकी बात कर रहे हो? केजरीवाल जी की बात कर रहे हो? पंजाब को लूट कर खा गए। ईडी की रेड में कह रहा हूँ कि कानून की प्रक्रिया है, जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पंजाब को कौन लूट रहा है? पंजाब को ये आम आदमी पार्टी, जो जो पैसा सेंटर से आता है उसकी लूट होती है, एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है, पंजाब के लोगों में नहीं बढ़ता है।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: कार्रवाई कर रही है। इसका मकसद क्या है? जैसे उन्होंने दिल्ली में कहा था कि यमुना जी के अंदर बीजेपी ने जहर डाल दी ताकि आम आदमी पार्टी के वोटर पानी पी के मर जाएं, इस तरह का दंगा भड़काने की उन्होंने दिल्ली में चुनाव में भी कोशिश की थी और अब पंजाब में भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं वहां की पंजाब पुलिस की और डीजीपी से, तुरंत अरविंद केजरीवाल जी और जिन्होंने इस ट्वीट को फॉरवर्ड करके भगवंत मान जी जैसे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके आगे चलाया है, इनके ऊपर दंगे भड़काने, एक शांतमयी प्रदेश के अंदर आग लगाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
4: हिंदू व्यापारी जो हैं वो सब समझते हैं, पंजाब को इन्होंने लूट लिया, पंजाब को इन्होंने खत्म कर दिया जो मौजूदा सरकार है। आप नशे की बात करते हैं, चिट्टे की बात अभी कर रहे थे, तो चिट्टे की बात और नशे की बात इनके खुद आप क्या करते हैं, स्टेजों पे जाकर, असेंबली में जाकर, वो आप किसकी बात कर रहे हो? केजरीवाल जी की बात कर रहे हो? पंजाब को लूट कर खा गए। ईडी की रेड में कह रहा हूँ कि कानून की प्रक्रिया है, जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पंजाब को कौन लूट रहा है? पंजाब को ये आम आदमी पार्टी, जो जो पैसा सेंटर से आता है उसकी लूट होती है, एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है, पंजाब के लोगों में नहीं भरता है।
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है ना, 12-13 साल हो गए, उनका एक ही काम रहा है, जहां जहां जाते उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए यूपी में कितने मदरसों को इन लोगों ने वो कर दिया, हाँ, अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए कि मदरसा ही है। अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले हैं, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना, बताइए। अब मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग, हाँ? शिशु मंदिर है, उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना। तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करे तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है, ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए।
1: As I said in my opening speech, the company will have equal number of AI workers. We call them AI agents as there are employees. If the company has 500,000 employees, the day is not far when the company will have 500,000 AI agents. So, the question will be, what all can be done by agents? And those things will be done by agents. And the company's employees and the AI agents will work together. And that will be the future. Will it definitely lead to decrease in hiring? Absolutely. The company will not be hiring the kind of numbers that it used to hire. Why? The company, the industry, is likely to hire the same number of people they used to hire, because certain portions of the work in the current scheme of things will go to AI agents. That does not mean there are no future opportunities. Once the transition happens, the AI world will produce so much more opportunities. There will be new talent that will be required. So the company will continue to hire talent, but some of the work that is being done will go to the AI agents. That will be the nature of the transition.

0: Welcome back. You're watching The Burning Question on India Today. And right now we're getting some breaking news. India Today had earlier reported on how five women died after C-section deliveries at a government hospital in Kota. And now what we are learning is that a probe has found that the tragedy was indeed linked to fake oxytocin injections. That's the big update that is coming in, confirming the news break of India Today. An investigation has confirmed that the injections administered to the women allegedly contained water instead of the life-saving drug used to control bleeding after childbirth. The probe found that because the oxytocin was fake, doctors were unable to stop the excessive blood loss following the surgery, leading to the deaths of the women. The findings have now confirmed the India Today news break that first exposed the suspected fake injection angle behind these deaths in Kota. At the time, the Rajasthan government had denied any link between fake drugs and the death, saying that no such conclusion could be drawn before the probe report. But now everything is out in the open. The investigation has in fact confirmed that water was there in the injection and not oxytocin. And that is what led to the death of the women in Rajasthan. My colleague Sharath Kumar is now joining us with more details on this. Sharath, bahut bada lab saamne aa raha hai jo ki confirm bhi kiya ja chuka hai. India Today ne pehle hi is bare mein report kiya tha ki kaise fake oxytocin ki wajah se paanch mahilaon ki jaan gayi, aur ab ye investigation mein bhi confirm kiya ja chuka hai.
1: Bilkul Anjali, jis tarah ki ye investigation report aayi hai, ye apne aap mein dikhata hai ki kitna bada lab test hai ki is tarah sarkari hospital mein ek aisa injection laga diya gaya jisme oxytocin tha hi nahi aur bleeding ruki nahi. Cesarean jo operation hua paanch mahilaon ka, usme bleeding ho rahi thi aur bleeding ki wajah se ये इंजेक्शन दिया गया और ब्लीडिंग नहीं रुकी. ये खबर सबसे पहले इंडिया टुडे ने ये दिखाया था. उसके बाद सरकार ने कहा था कि नहीं, ऑक्सीटोसिन से अगर ये ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी तो और इंजेक्शन भी लगाया जा सकता था, ये वजह नहीं हो सकती, हम जांच कर रहे हैं. मगर अब ये जांच रिपोर्ट आई है और जांच रिपोर्ट के बाद राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींसर का कहना है कि कोटा में जो मौतें हुई थी वो दरअसल ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था उसमें और पानी की वजह से ये मौतें हुई थी. हालांकि जो अमृतसर में कंपनी है ऑक्सीटोसिन बनाने वाले, उसको सीज कर दिया गया है. सारे उसके जो ड्रग्स बनाने के लाइसेंस हैं वो छीन लिए गए हैं. मगर अब ये रिपोर्ट आई है और अब सरकार ने करीब एक महीने बाद ये माना है कि नकली इंजेक्शन की वजह से पांच महिलाओं की मौत हुई थी. ये दिल दहला देने वाली खबर है कि किस तरह से ये इंजेक्शन जो है मौत की वजह बनी. और एक यही नहीं, पांच स्टेट में इंजेक्शन भेजे गए थे, इसमें दिल्ली भी शामिल था. वहां पर किस तरह का इंजेक्शन का ये प्रभाव रहा पता नहीं, मगर कोटा में अत्यधिक ब्लीडिंग में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया और डॉक्टरों को पता नहीं था कि इंजेक्शन नकली है. अगर ये पता रहता तो दूसरी दवाइयों का उपयोग कर सकते थे, डॉक्टर कहना ऐसा
0: है. तो शरद, अब जब ये साफ हो गया है कि नकली इंजेक्शन यूज किया गया, ऑक्सीटोसिन था ही नहीं इंजेक्शन में और पानी भरा हुआ था, पांच महिलाओं की जान जा चुकी है, तो अब क्या एक्शन लिया जा रहा है, किसको अकाउंटेबल होल्ड किया जा रहा है इन पांच मौतों के पीछे?
1: देखिए, ये तो कंपनी को अकाउंटेबल मांग रहे हैं और कंपनी का लाइसेंस सीज करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाएगा कंपनी के मालिक को. दूसरी तरफ जो हमने आपको उस समय दिखाया था एनडीए ने कि किस तरह से बाजार से खरीद कर असल इंजेक्शन लगाया, अब जाके इस रिपोर्ट के बाद एसओपी बनाई जा रही है कि आखिर किस तरह के इंजेक्शन बाजार से इमरजेंसी में खरीदे जा सकते हैं. सरकारी अस्पताल में दवा खरीदने का कोई एसओपी नहीं था, कहीं से कोई इंजेक्शन अस्पताल मंगा सकता था, ये भी अपने आप में एक बड़ी गफलत थी.
0: जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो इंडिया टुडेज न्यूज ब्रेक हैज बीन कंफर्म्ड, इट वाज इन फैक्ट द फेक ऑक्सीटोसिन दैट वाज बिहाइंड द डेथ ऑफ द फाइव वुमेन इन राजस्थान. व्हाट वी आर लर्निंग इज दैट द इंजेक्शंस वर फिल्ड विद वाटर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीटोसिन दैट लेड टू द ब्लड लॉस आफ्टर द सर्जरी एंड दैट इज व्हाट लेड टू द डेथ ऑफ द फाइव वुमेन. And Prime Minister Narendra Modi has now become India's longest continuously serving elected Prime Minister, completing 4,399 days in office today and surpassing the record of India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. So the Modi government has completed 12 years Prime Minister Modi has completed 4,399 days in the office. He has surpassed Jawaharlal Nehru and has become the longest serving elected Prime Minister, longest continuously serving elected Prime Minister. And union ministers now visit temples, offer prayers on this occasion, and the ministers are praying on the occasion of the 12 years of the Modi government. Giriraj Singh, the union minister, offered prayers and he called Prime Minister Modi as Mahamanav. Prime Minister Modi has shattered Jawaharlal Nehru's record by becoming the longest serving, continuous serving elected Prime Minister of India. So growth, governance and global recognition for Prime Minister Modi.
2: आज देश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है. अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रहकर सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं. महाप्रभु श्री जगन्नाथ

0: ways to improve ease of living and center-state coordination. A resolution highlighting the government's achievements is also expected to be adopted.
1: ये मामूली नहीं है 4,399 days प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है
2: पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में सुशासन आर्थिक अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण है गरीब कल्याण विकास के नए आयाम स्थापित किए 2014 के पहले की सरकारें भी हमें मालूम है जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे रिमोट था सोनिया जी के हाथ में इस देश की हर व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता था नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए तो इस देश के मान और सम्मान को भी पूरे देश में और पूरी दुनिया में उन्होंने स्थापित किया उन्होंने डबल इंजन की सरकार की एक नई परिभाषा को प्रतिपादित किया
3: आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में देश को एक नई ऊंचाई हासिल करके दी है एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है जो देश की प्रगति देश का विकास और देश की उन्नति पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है
0: Now shifting focus, we're getting some breaking news. This is regarding the candidature of the Congress candidate for the Rajya Sabha elections that was cancelled now, after which Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has now hit out at Congress over the Rajya Sabha nomination. Madhya Pradesh Chief Minister has said that the Congress deliberately made errors in the form. Many in Congress were eyeing the Rajya Sabha seat. All necessary details were not submitted. And he also said that Congress lacks faith in their own MLAs. And Congress should look within themselves. So that is the reaction from the Madhya Pradesh Chief Minister after the controversy over the cancelling of the nomination and the form of Meenakshi Natarajan, the Congress candidate for the Rajya Sabha elections from Madhya Pradesh. And now Madhya Pradesh Chief Minister has said that the details were not given by the Congress party deliberately and that the Congress party lacks faith in their own MLAs. My colleague Amit Bhardwaj is now joining us with more details on this. Amit, that's the attack that is coming in from the BJP, essentially from the Madhya Pradesh Chief Minister. Who's in fact blaming the Congress party for the cancellation of the nomination of Meenakshi Natarajan and is saying that the Congress party deliberately hid the details.
4: Anjali, you know, the war of words is only to escalate today because the Congress party yesterday had staged a massive protest outside the Election Commission of India in the national capital. You had mobilization happening in Madhya Pradesh as well, and today Congress delegation is slated to meet the Election Commission of India around 12 p.m. in regards to the Meenakshi Natarajan's nomination cancellation. And what the Congress party is saying and what Meenakshi Natarajan herself has said is that this was no FIR that was lost in any of the police stations and there was no case going on. It was just a legal notice. So how do you declare that legal notice until it converts or get converted into a legal case? That's what is the defense of the Congress party, saying that this was pretty deliberate and what started from vote chori has converted into seat chori. That is the allegation or counter allegation coming from the Congress party and Meenakshi Natarajan herself, saying that this was deliberate and so that her nomination gets cancelled. And you would also have to keep in consideration as to how the Congress party was fearing horse trading, and that is why they were trying to shift their MLAs into a resort in Karnataka so that by the time voting happens, their house is intact. But before that, the nomination itself has gotten cancelled. Back to you.
0: All right, Amit, do stay with us. Let's also listen into what exactly the Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has said on the cancellation of the nomination of Meenakshi Natarajan.
5: कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नजर थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया है। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं।
0: And my colleague Ravish Pal is also joining us on this story. Ravish, those are the claims being made by the Madhya Pradesh Chief Minister. Contrary to what the Congress Party is claiming, the Madhya Pradesh Chief Minister has said that the Congress Party, in fact, deliberately hid all the details, concealed the details of the cases on Meenakshi Natarajan.
6: बिल्कुल अंजलि, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो ये बयान आज दिया, लेकिन कल जब से नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है मीनाक्षी नटराजन का, तो बीजेपी के लीडर्स दो बातें कर रहे हैं। पहला ये कि मीनाक्षी नटराजन को हराने वाले बीजेपी के लोग नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के लोग हैं। कल कैलाश विजयवर्गीय जो नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान जब आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे वहां पे, जब स्क्रूटनी हो रही थी डॉक्यूमेंट्स की, तो बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय वहां पे थे। उन्होंने भी नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद एक बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में कोर्ट में एक समन था मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, तो फिर उसकी जानकारी बीजेपी को कैसे मिली? उन्होंने वहां यह बताया कि तेलंगाना में तो आप ही की सरकार है, मध्य प्रदेश में तेलंगाना की AICC प्रभारी मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने बात बोली कि यह कागज, यानी जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था बीजेपी की तरफ से, ऑब्जेक्शन वाला शो कॉज नोटिस की कॉपी जो है वो कांग्रेस की तरफ से ही बीजेपी को दी गई है। तो बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पे कह रही है कि कहीं से भी उसका जो नॉमिनेशन था मीनाक्षी नटराजन का, उसे कैंसिल करने के पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं, बल्कि ये सब कुछ कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई हो रही है उसे लेकर के। देखिए, राज्यसभा सीट किसकी थी? राज्यसभा सीट दिग्विजय सिंह के पास थी। इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो चुनाव पे नहीं जाएंगे राज्यसभा के। और उनके बाद ये जब हुआ, तो जब मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया, उनको कैंडिडेट बनाया कांग्रेस ने, तो उसके बाद से कांग्रेस के ही अंदर से कई सारे लोग सामने आ रहे थे जो कह रहे थे कि ये कैंडिडेचर जो है गलत है, ये नहीं होना चाहिए किसी बड़े नाम को देना चाहिए।
0: जी रविश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो द वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस कंटिन्यूज। द कांग्रेस इज ब्लेमिंग द बीजेपी, मीनवाइल द बीजेपी हैज इट आउट एट द कांग्रेस, क्लेमिंग दैट दिस इज नथिंग बट एन इनसाइड जॉब दैट हैज बीन डन बाय द कांग्रेस लीडर्स इटसेल्फ। विद दैट, इट्स अ रैप ऑन दिस बुलेटिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया टुडे। मोर न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।
7: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.

जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है ना, 12-13 साल हो गए, उनका एक ही काम रहा है, जहां जहां जाते उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए यूपी में कितने मदरसों को इन लोगों ने वो कर दिया। हाँ, अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए कि मदरसा ही है। अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना। बताइए, आप मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ, शिशु मंदिर है, उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना। तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करे तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है, ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए।

0: Welcome back. We're getting some breaking news. This is regarding the pregnant woman's death reported in Rajasthan. Now, the Rajasthan government has denied our news break and now stands corrected. Rajasthan minister says that the injection had only water. Remember earlier, the Rajasthan government, when we had done the news break on this particular story, the Rajasthan government had said that these reports are false and that there were no lapses at the Kota hospital. But now they stand corrected. Now they are admitting that the injection had only water instead of oxytocin that led to the death of the five women at the Kota hospital. The Rajasthan minister has said that bleeding of women couldn't be stopped because the injection did not have oxytocin. It had only water. Oxytocin while contained only water, and it had no trace of the actual drug but only water, and that is what led to the death of the five pregnant women in Rajasthan.
1: उसके अंदर कोई उसके अंदर नहीं था ये अनियमता हमने पाई थी और वो भी जो है डिपार्टमेंट ने जो हम उनको जो 20-25% उनको छूट देते हैं कि हम आपके पास ड्रग्स नहीं है आप लोकल ले सकते हो तो वो लोकल परचेस किया गया उसके अंदर कोई भी मात्रा दवाई की नहीं थी जो जब डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया वो इंजेक्शन पोस्ट डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग को रोकता है तो जब इंजेक्शन दिया और उसके अंदर वो ड्रग ही नहीं था और खाली पानी गया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग तो जरूर हुई है.
0: And my colleague Sharath Kumar is now joining us with more details on this. Sharath, ab Rajasthan health minister ne bhi maan liya hai, jo ki kuch time pehle tak ye keh rahe the ki ye reports fake hai, fake oxytocin nahi use kiya gaya hai aur asli oxytocin use kiya gaya. Ab wo khud ye maan rahe hain ki jo injection tha usme oxytocin tha hi nahi, sirf pani tha.
2: बिल्कुल अंजलि, जब ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये पांच मौतें क्यों हुई है तो दिल्ली से भारत सरकार ने एम्स के डॉक्टरों की टीम भेजी थी और एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि आपने जितनी भी दवाइयां दी है इन महिलाओं को उन सब की लैब में जांच कराइए. लैब में जांच कराने पर इन्हें पता चला कि ये इंजेक्शन नकली है लेकिन ये स्थानीय लैब में जाँच हुई थी. कल शाम को कोलकाता के लैब से जो आखिरी जांच की रिपोर्ट होती है वो कोलकाता भेजी जाती है. कोलकाता के लैब ने भेजा कि इसमें केवल वाटर कंटेंट थे, इसमें मेडिसिन नहीं था. उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ये माना है कि जो सिजेरियन डिलीवरी में ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये दवा दी जाती है और डॉक्टर को पता नहीं था कि नकली दवा है, ये दिए और रुका नहीं. अगर उन्हें पता होता कि ये दवा में दिक्कत है तो दूसरी दवा वो दे सकते थे लेकिन दवा पर शक नहीं था इसलिए दूसरी दवा का प्रयोग नहीं किए जिसकी वजह से ये मौतें हुई है, ऐसा मानना है उनका. रिपोर्ट के बाद कोलकाता की जो फाइनल रिपोर्ट कल शाम को आई है उसके बाद अब जो फैक्ट्री मालिक है अमृतसर का उस पे मुकदमा पहले दर्ज कर लिया गया है. अब गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी ऐसा कहा जा रहा है और अब लोकल परचेज के भी नियम बनाए गए हैं कि लोकल परचेज भी ऐसे किसी भी जगह से आप नहीं ले सकते. जो स्टॉकेज था कोटा में उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
0: जी शरद, हमारे साथ बने रहिए. सो राजस्थान हेल्थ मिनिस्टर हैज नाउ फाइनली एडमिटेड दैट देयर वर इंडीड लैप्सेस दैट लेड टू द डेथ ऑफ द फाइव वुमेन एंड देयर वाज इन फैक्ट वाटर इनसाइड द इंजेक्शन एंड नॉट ऑक्सीटोसिन. And India Today had reported how five women died after C-section deliveries at a government hospital in Kota in Rajasthan. Now a probe has in fact found that the tragedy was indeed linked to fake oxytocin injections. An investigation has now confirmed that the injections administered to the women allegedly contained water instead of the life-saving drug used to control bleeding after childbirth. The probe found that because the oxytocin was fake, doctors were unable to stop excessive blood loss following the surgery.

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ballgame.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: यू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है ना, 12-13 साल हो गए, उनका एक ही काम रहा है, जहां जहां जाते उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए यूपी में कितने मदरसों को इन लोगों ने वो कर दिया। हाँ, अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए कि मदरसा ही है। अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना। बताइए, आप मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ, शिशु मंदिर है, उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना। तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करें तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है। ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए।

ने बहुत अच्छे से आपको विस्तार में कह दिया है। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद यह तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था, और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए।

0: better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: हिंदू व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, इसका मकसद क्या है? जैसे उन्होंने दिल्ली में कहा था कि यमुना जी के अंदर बीजेपी ने जहर डाल दी ताकि आम आदमी पार्टी के वोटर पानी पी के मर जाएं, इस तरह का दंगा भड़काने की उन्होंने दिल्ली में चुनाव में भी कोशिश की थी और अब पंजाब में भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं वहां की पंजाब पुलिस की और डीजीपी से, तुरंत अरविंद केजरीवाल जी और जिन्होंने इस ट्वीट को फॉरवर्ड करके भगवंत मान जी जैसे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके आगे चलाया है, इनके ऊपर दंगे भड़काने, एक शांतमयी प्रदेश के अंदर आग लगाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
4: हिंदू व्यापारी जो हैं वो सब समझते हैं, पंजाब को इन्होंने लूट लिया, पंजाब को इन्होंने खत्म कर दिया जो मौजूदा सरकार है। आप नशे की बात करते हैं, चिट्टे की बात अभी कर रहे थे, तो चिट्टे की बात और नशे की बात इनके खुद आप क्या करते हैं, स्टेजों पे जाकर, असेंबली में जाकर, वो आप किसकी बात कर रहे हो? केजरीवाल जी की बात कर रहे हो? पंजाब को लूट कर खा गए। ईडी की रेड में कह रहा हूँ कि कानून की प्रक्रिया है, जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पंजाब को कौन लूट रहा है? पंजाब को ये आम आदमी पार्टी, जो पैसा सेंटर से आता है उसकी लूट होती है, एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है, पंजाब के लोगों में नहीं भरता है।

0: इट इज वेरी सिंपल, बंगाल में जो परिस्थिति है इस वक्त जो चल रहा है, मतलब तृणमूल कांग्रेस का आसाम में क्या होगा मैं कह नहीं सकती, हालांकि हम एक एमएलए सीट जीत के आए हैं. सो इट्स अ वेरी, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स अ पर्सनल डिसीजन. और देखिए ये बड़ा डिसीजन है, उसको फिर अब्सॉर्ब करने में भी टाइम लगता है, तो दो तीन दिन बाद फिर से आपसे बात करेंगे.
1: एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा कि आपने असम की बात की, लेकिन बंगाल में तो इस बार जादू हो गया, बीजेपी 200 पार हो गई, लोगों को लग नहीं रहा था कि अभी बीजेपी वहां सरकार बना पाएगी. जिस तरह की स्थिति और जैसा परफॉर्मेंस बीजेपी का बंगाल में रहा, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे?
0: जी सच्चाई तो ये है, मैंने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत के आएगी. ये मेरा असेसमेंट था, गलत हो सकता है. पर जब रिजल्ट निकला, जब देखा क्या रिजल्ट है, उसमें कई सारे बातें थी, SIR, ये वो, मेनी थ्योरीज, बट मैंडेट इज अ मैंडेट, अच्छा लगे या बुरा लगे. सो मैंडेट को तो मानना पड़ेगा.
1: आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी की गलती की वजह से सांसद नाराज है, अभिषेक बनर्जी की गलती की वजह से?
0: सी देखिए मैं एक चीज बताती हूँ, मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूं, ठीक है. आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूं, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको, अनुभव.
1: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
0: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है. इट इज वेरी सिंपल, मैं आपको ये जरूर कह रही हूं कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं मानती हूं कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है.
1: क्या टीएमसी के साथ रहकर नहीं कर सकते थे?
0: देखिए मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखी है असम में, और मैंने बीजेपी की सरकार देखी है. अब टीएमसी की सरकार कभी असम में होगी कि नहीं मैं कह नहीं सकती, बट आई हैव सीन द कंपैरिजन. तुलना करने की तो मैं लायक हूं, इतनी तो मुझे दिख रहा है कि काम में क्या अंतर है, और जमीन आसमान का अंतर है, यही सच्चाई है.
1: मैं खत्म करता हूँ इंटरव्यू. आपको लगता है पिछले 15 साल में करप्शन, गुंडागर्दी, लूटमार, जिस तरह की बातें बीजेपी कहती थी, वो हुआ बंगाल के अंदर? तो आपने भी कई टीएमसी नेताओं के साथ काम किया, आपने ममता बनर्जी के साथ में काम किया, आपको लगता है ऐसा
0: गुंडागर्दी हुआ कि नहीं, चोरी हुई कि नहीं, डकैती हुई कि नहीं, ये मैं तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे. मैं कर सकती हूँ क्या? मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है क्या? तो मैं कैसे टीवी पे बोल दूं कि ये चोर है, ये डकैत है, इसने चोरी की, मैं क्यों बोलूं?
1: मेरा क्या नाराजगी आपकी?
0: देखिए कुछ भी कारण हो, कुछ तो कारण होगा, जो भी कारण है वो कारण मैं हेमंतदा को बोल चुकी हूँ, अब आपको कभी और बताएंगे.
2: तो सुष्मिता देव जो तृणमूल कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई थी, वो अब इस्तीफा दे चुकी हैं. फिलहाल वो कारण नहीं बता रही हैं, लेकिन उनका ये लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि वो टीएमसी से अलग होकर ही अगर काम करना चाहें तृणमूल कांग्रेस के अंदर तो वो कर सकती हैं. मेरे से हो गया अंकित सिंह के साथ, मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली.
3: And the first statement coming in from Sushmita Dev to India Today, where she's saying that she very well wants to continue in politics, but instead work from Assam. She's saying that it is a party's decision to take the Neta, and she said that she met with Hemanta Biswa Sarma, where she lauded his work in Assam and said that that clearly is the way forward for her. Shifting focus now, Modi government has completed 12 years, making Prime Minister Modi the longest serving Prime Minister. It was on May 26, 2014 that Narendra Modi took oath as Prime Minister for the first time. He returned to power with a thumping majority on the 30th of May 2019. On the 9th of June 2024, Prime Minister Modi took oath as Prime Minister for the third consecutive time. He has now been in office for 4,399 days and is still counting. Meanwhile, the cabinet passed a resolution applauding Prime Minister Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister to serve consecutive terms. Cabinet members also gave a standing ovation to Prime Minister Modi. Union ministers including Dharmendra Pradhan, JP Nadda, Giriraj Singh, along with Chief Ministers Rekha Gupta and Mohan Yadav, who offered special prayers at different temples as Prime Minister Modi completed 12 years in office. Not just Indian leaders, world leaders who also congratulated Prime Minister Modi. Italian Prime Minister Giorgia Meloni, who

0: trains, overflowing platform, and endless hours of waiting. Some spread bed sheets on station floors, others make do with plastic sheets. It's a familiar scene year after year. Every recruitment exam brings with it not just the test of knowledge, but the test of endurance. From towns and villages across Uttar Pradesh, thousands set out with a single goal: clearing the UP constable exam.
1: डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी हुई थी
2: गर्मी के माहौल में आप सब परेशान
1: पैदल वहां से यहां स्टेशन तक पैदल आए
3: कोई व्यवस्था नहीं बस यहीं से फिर जाना दूसरा स्टेशन के लिए गाड़ी पकड़ना डायरेक्ट मेरे लिए कोई गाड़ी भी नहीं है जैसे कि बोला गया था कि बस का किराया फ्री है 10% भी छूट नहीं है उसमें 25% की आप छोड़िए
4: अभी स्थिति ठीक है अभी 50% की रियायत मिल रही है जैसे मेरे कई दोस्त गए हैं तो बता रहे 50% छूट मिल रही है
0: Nearly 28.9 lakh candidates competing for just 32,679 constable vacancies. The odds are daunting, the journey even more so. Making it to the exam hall is just the first hurdle. What they fear most are paper leaks and cancelled tests.
5: आज सिर्फ देखे आए इतना कॉन्फिडेंट लेकिन ये भी भरोसा नहीं है कल को हमारा आएगा भी रिजल्ट आएगा नहीं पता लगा सुबह पता न्यूज आ गई कि पेपर लीक हो गया
1: मेरे लिए तो बहुत जरूरी है बस हो जाए बस पेपर लीक ना हो कहने का मतलब बस ये हो जाए ठीक से
2: क्या उम्मीद करते हैं सरकार से पेपर अच्छे से
1: लीक ना करे बस यही उम्मीद रखते हैं बस
6: जो लोगों के जो फेस कर रहे हैं वो पेपर लीक के बारे में कर रहे हैं
0: दे आर बैटलिंग फॉर स्पेस ऑन ट्रेन्स दे आर आल्सो फाइटिंग अ सिस्टम दैट हैज रिपीटेडली टेस्टेड द पेशेंट्स विद लीक्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर
7: ऐसे मुद्दों को दिखाने के लिए मीडिया भी लोकल एक मीडिया दिखा पाती है इंटरनेशनल जो मीडिया है वो नहीं दिखाती इंटरनेशनल लेवल की मीडिया है वो क्या करती है ये देखे कि झालमुरी कैसे बनती है बंगाल में झालमुरी का कैसे प्रचार होता है वहाँ प्रधानमंत्री जी वो मेलोडी के चॉकलेट कैसे खिलाते हैं
0: दिस टाइम दे होप द टेस्ट मेजर्स ओनली देयर मेरिट विद सीमा चावला गजेंद्र त्रिपाठी एंड अभिषेक त्रिपाठी ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे

0: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
1: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: से नफरत बुरके से हिजाब से मस्जिद से मदरसे से खानकाहों से हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है. आप ये देखिए यूपी में कितने मदरसों को इन लोगों ने वो कर दिया. हाँ, अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए कि मदरसा ही है. अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना. बताइए आप मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग. शिशु मंदिर है उनका भी सर्वे करिए ना. संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना. तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप. अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या, जरा पूछो उनको. तो सर्वे जब करें तो सबका ही करिए ना. मगर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है, ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए.

0: And well, Mamata Banerjee's hold over her party that continues to unravel after 61 MLAs threw their weight behind rebel leader Rita Pratap Banerjee. The rebellion has now spread to the parliament. Just a week after Didi's trusted aide Sukhendu Sekhar Roy had quit the Rajya Sabha, Sushmita Dev has followed suit. She's resigned from both the upper house and the party's primary membership, dealing another blow to Mamata's camp. Sushmita Dev spoke exclusively to India Today and explained her big move. In a surprise move that Sushmita also met with Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma in Delhi after resigning from the Rajya Sabha, with sources telling India Today that she is likely to join the BJP. Sources further revealed that Sushmita may contest from an Assam Lok Sabha seat where a by-election is due. Listen in to what she told India Today.
1: Look, the reason is something personal, something political. Without the reason, no one does anything. मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है. देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है. बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है. मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है. क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
2: जी.
1: हाँ, जहाँ विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था. तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए. जो आपका नहीं है उस पर क्यों बैठे रहे. देखिए, सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है. तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है. मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिलके आई हूँ. और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता. सो लेट अस सी. बट आई फील, सी, आई एम अ लेडी, शुड नेवर गिव हर एज, बट आई एम 53. यू कैन गूगल एंड सी. सो अगले 5 साल तो शायद बीजेपी रहेगी आसाम में. हाँ, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बराक वैली में स्पेशली किया है, क्योंकि मैंने तो राजनीति बराक वैली असम में किया है. आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन द पास्ट. अतीत में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जो हमारी बहुत बड़ी समस्या, मैंने पहले कभी नहीं देखा. तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलती थी पर वहां जाके अटक जाती थी जब डेवलपमेंट की बात आती थी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट.
0: And well, it is a big setback for the Congress in Madhya Pradesh Rajya Sabha race. Just days before voting, the nomination of Rahul Gandhi loyalist Meenakshi Natarajan has been rejected, throwing the contest wide open. Congress has strongly contested the decision and met senior ECI officials in the national capital. Congress has claimed that there is no criminal case against Natarajan, only a court notice. Congress has alleged that the decision of the returning officer was wrong and would await the decision of the Election Commission. Speaking to India Today, Meenakshi Natarajan said that these are BJP's attempts to manipulate the Rajya Sabha polls and clarified that she has no pending cases against her. BJP candidate objected to her nomination papers, alleging she failed to disclose details of a pending Telangana case in her affidavit. The returning officer accepted the objection and cancelled her nomination. While the BJP celebrates the setback for Congress, Minister Kailash Vijayawargiya had added a twist, claiming the information came from Telangana and hinting that the Congress may have leaked details against its own candidate.
3: तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं.
4: वी होप एंड ट्रस्ट दैट द ईसी विल रियलाइज दैट दिस क्रिएट्स ए वेरी बैड डिस्टॉर्टेड नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड. ए नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution. And they should, therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful, without law order. And it should be set aside immediately is our request.
5: Asamvedanik or illegal.
2: निर्णय लिया है रिटर्निंग ऑफिसर ने बहुत ही पक्षपातपूर्ण लीगल पॉलिटिकल पूरे कदम उठाए जाएंगे
5: कि ना तो कोई कॉग्निजेंस किसी कोर्ट ने लिया है ना कोई एफआईआर है तो मैं बार बार यही प्रश्न किया इलेक्शन कमीशन से कि अगर हम चाहते भी तो डिस्क्लोज कैसे करते आपके पास कौन सा कॉलम है जहां को डिस्क्लोज करने का जरिया था ये तो एक ऐसा अनहोनी फैसला हो गया है जिससे हम लोग सब हैं
6: मैं बता तो रहा हूं मैं तो बहुत पहले एक बात कही थी कि एक कुर्सी इलेक्शन कमीशन में डाल दीजिए जो पर्ची बीजेपी ऑफिस से आए उसको सर्टिफिकेट दे दे तो चुनाव का पैसा तो बचेगा देश का हालात क्या बना दिया आपने देश में लोकतंत्र नाम की चीज बची है डेमोक्रेसी को कुचल दिया रौंद दिया विपक्ष के लोगों को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं कि विपक्ष को बर्बाद कर दें
7: कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नजर थी जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया है कितनी छोटी बात है कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं
8: भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य राज्यसभा के सदस्य बने और चुनाव होते तो भी बनते इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए
9: जी
8: कहाँ से आए हमारे
9: तेलंगाना से
8: कहाँ से आए भाई और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं
0: इंडिया टुडे एक्सक्लूसिवली स्पोक टू मीनाक्षी नटराजन लेट्स लिसन इन टू व्हाट शी सेड
10: तीन दिन से हमारे सारे एमएलए अपने आप यहाँ आ रहे हैं और साथ में हैं जब पूरा हाउस यूनाइटेड है तो उन्होंने उसको पूरा करने के लिए एक बिल्कुल फर्जी बात पेश की जो एक लीगल नोटिस है जिसका कोई अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है ये प्री कॉग्निसेंस स्टेज में था और उससे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ कोई केस नहीं है तो उसको उन्होंने आधार बनाया और उसके बाद जब उन्होंने फाइनल ऑर्डर्स दिए उन फाइनल ऑर्डर्स में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हमारे वकीलों ने उसका उसमें कोई जिक्र तक नहीं किया जिससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये कहां से मोटिवेटेड था किस तरह से ये फैसला हुआ दिस वॉज नॉट अ लीगल बैटल विच वी लॉस्ट This is a battle which we lost against political will. ये जो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है जो वोट चोरी से चालू हुई अब वो सीट चोरी तक पहुंच गई है और ये उसका साफ प्रमाण है
0: While Congress candidate Meenakshi Natarajan's nomination in Madhya Pradesh was outright rejected over alleged non-disclosure in her affidavit, BJP-backed independent candidate Parimal Nathwani in Jharkhand has been given time to respond to the objections raised against his nomination. In Jharkhand, Congress objected to Nathwani's papers, following which scrutiny was kept pending and his nomination was put on hold rather than immediately rejected. Election authorities have sought clarifications before taking a final call. The contrast is now providing fresh ammunition to the Congress. And that is how it has panned out. Remember, the Congress also held a meeting with the Election Commission. They were at the office this afternoon where they said that the entire process of how these details need to be disclosed in the affidavit have been misinterpreted by the BJP. The BJP, on the other hand, pointing fingers at the Congress saying that they need to internalize and see where exactly they've gone wrong. And how the controversy has now escalated as BJP-backed independent candidate Parimal Nathwani in Jharkhand, who has been given time to respond to the objections against his nomination that have been raised. Ravish Pal Singh joining us live with further details on the sort of objection that has been leveled by the Congress, this time against Parimal Nathwani in Jharkhand, and how the Election Commission has responded, which has been criticized by the Congress. Ravish, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से अब ये बाजी पलट गई है, क्योंकि पिछली बार जो मनीषा नटराजन के मीनाक्षी नटराजन के केस में हुआ, वहां पर बीजेपी ने बोला कि पेपर्स इनकम्प्लीट थे, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट भी किया। पर इस बार जो झारखंड में हुआ है और नथवानी के जो पेपर्स थे वो कंप्लीट नहीं थे, बट इलेक्शन कमीशन ने उसको होल्ड कर लिया और बोला कि हम पहले पूरी जांच करेंगे। किस तरह से कांग्रेस अब रिस्पॉन्ड कर रही है?
11: देखिए, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का पूरा ध्यान मीनाक्षी नटराजन पर है, इसलिए झारखंड में क्या हो रहा है इसकी जानकारी फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को तो नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी हो, LOP उमंग सिंघार हो या फिर तमाम दूसरे बड़े नेताओं कांग्रेस के, वो आज एक प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। करीब 4 घंटे तक एक स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, और उनका यही कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता था जिसे नॉमिनेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मीनाक्षी नटराजन को सिर्फ कोर्ट की तरफ से एक नोटिस था जिसमें उन्हें बताया गया था कि एक महिला ने उनके ऊपर हुए सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में आपको भी पार्टी बनाया है, क्योंकि आरोप है कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले की जानकारी होते हुए भी। और जब नॉमिनेशन प्रोसेस होती है तो उसमें कहीं पर भी इस तरीके के लीगल नोटिसेस का कोई कॉलम नहीं होता है, ये कहना है कांग्रेस का। और इसीलिए कांग्रेस के जो लीगल सेल के दो हेड्स और साथ ही में लॉयर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन से आज मिले हैं। कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे AICC के, वो मीनाक्षी नटराजन के साथ थे, दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है ECI ऑफिस में। ECI ने थोड़ा टाइम मांगा है, तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद ECI बताएगी कि जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं कांग्रेस ने इस नॉमिनेशन को कैंसिल होने के बाद वो वैलिड है या नहीं, और इस पे आज फैसला आ जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में इतना तय है कि कांग्रेस कल से यही कह रही है कि जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल किया गया और जो जल्दबाजी दिखाई गई, यानी दोपहर को 2 बजे के लगभग नॉमिनेशन में ऑब्जेक्शन उठाया बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के, और उसके ठीक 4:30 घंटे बाद 6:30 बजे शाम को मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। लेकिन कल जब ऑब्जेक्शन उठाया गया झारखंड में रांची में कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से, तो उसे अब तक होल्ड पे रखा गया है। तो ये जो दो डिफरेंसेस आ रहे हैं नॉमिनेशन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस पे कांग्रेस जरूर ऑब्जेक्शन उठा रही है कल से लेकर अब तक।
0: जी रवीश, फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। Moving on, as the NDA government completes 12 years at the center, the focus now shifts from celebration to consolidation. A key NDA meeting will be held at Bharat Mandapam at 3 p.m. The meet that will bring together top alliance leaders, chief ministers, deputy chief ministers, union ministers to review the government's 12-year journey and chart the road ahead. The meeting that comes on a politically significant day. Prime Minister Narendra Modi also becoming India's longest-serving elected Prime Minister, surpassing Jawaharlal Nehru's record and crossing 4,399 days in office. Sources say that NDA will discuss the roadmap for Viksit Bharat 2047, review flagship development projects, assess welfare delivery, and explore ways to improve ease of living and center-state coordination. A resolution highlighting the government's achievements is also expected to be adopted. Modi government has completed 12 years, making Prime Minister Modi the longest-serving Prime Minister. It was on May 26, 2014 that Narendra Modi took oath as Prime Minister for the first time. He returned to power with a thumping majority on the 30th of May 2019. On the 9th of June 2024, Prime Minister Modi took oath as Prime Minister for the third time, and he has continued to serve for 4,399 days consecutively. That we also saw the applause that came in from the cabinet this afternoon, but all eyes now on the meeting that is to happen at 3 p.m. at Bharat Mandapam. Prime Minister Narendra Modi, who also thanked all the ministers as they presented a standing ovation at the cabinet meet. Those are the pictures on your screens of how they applauded Prime Minister Narendra Modi and thanked him for his leadership. Prime Minister Narendra Modi in that cabinet meeting, who thanked everyone for becoming the longest serving elected prime minister to serve consecutive terms. Cabinet members who also gave him a standing ovation, union ministers including Dharmendra Pradhan, JP Nadda, Giriraj Singh, along with chief ministers Rekha Gupta and Mohan Yadav, offered special prayers at different temples as Prime Minister Modi completed 12 years in office. Not just Indian leaders, world leaders who also congratulated Prime Minister Modi, including Italian Prime Minister Giorgia Meloni, who congratulated Prime Minister Modi and expressed her pleasure at meeting him again in Rome recently. Sri Lankan President Anura Kumara, who also lauded Prime Minister Modi's leadership and said that India strengthened its position under PM Modi, while former Australian Prime Minister Scott Morrison described him as a true statesman.
12: आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है. मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं ना कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक धारण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है. मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ.
13: ये मामूली नहीं है, 4,399 days प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा. और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है.
14: आज देश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है. अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रहकर सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं.
15: आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनके दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है. और जो विकसित भारत की कल्पना है उसको साकार करने में ईश्वर उनको ताकत दे.
16: और 12 वर्ष भी अद्भुत है, विकास के लिए अभूतपूर्व है. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में एक क्षण भी विश्राम नहीं किया. जनता का काम ही उनके लिए राम काज है. राम काज कीने बिना मोही कहां विश्राम. सामान्य आदमी दिन और रात इतनी मेहनत नहीं कर सकता, वो सुपर ह्यूमन है.
17: इन 12 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में की है. योजनाओं का आकार बढ़ा है और देश का मान और सम्मान बढ़ा है. ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इकोनॉमी के जो पिलर हैं उनको भी साउंड रखा, इकोनॉमी की साइज भी बढ़ाई और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे काम करके भारत का मान और सम्मान भी देश और दुनिया में बढ़ाया.
18: आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में देश को एक नई ऊंचाई हासिल करके दी है, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, जो देश की प्रगति, देश का विकास और देश की उन्नति पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है.
0: More breaking details coming in of another big jolt to Mamata Banerjee. Sources tell India Today that loyalist Mala Roy, who's now set to join the rebels as well. Sources tell India Today that TMC MP Mala Roy, who is in Delhi, and she is also likely to join the rebel TMC camp. One bad news after the other coming in for Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, who are trying their level best to keep the flock together while they've also sought the help of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the very reason that they are in Delhi. But certainly not good news for them, as one pillar after the other of the TMC that is now calling it quits with the party with Mamata Banerjee, with Abhishek Banerjee. In the latest name that is just emerging is of that of loyalist Mala Roy, who is set to join the rebels. Let me take this to my colleague Anupam Mishra joining us on the broadcast. Anupam, what are the details coming in on Mala Roy?
19: Well, we are getting the information from the sources that Mala Roy, TMC MP from South Kolkata, is also in Delhi, and she is also likely to join the rebel camp led by Kakuli Ghosh Dastidar. And this is the latest development which are coming at present. And few days back, we have seen Mala Roy with Mamata Banerjee. So it's a very drastic change which we are witnessing at present. And Mala Roy, one of the main persons, one of the lieutenant of Mamata Banerjee, is in Delhi. That is for sure with what we are getting, and she is also likely to join the rebel camp. That is what we are getting the information from the sources within the Trinamool Congress. So this is a big setback for Mamata Banerjee also, because we know that Kwakalu Ghosh Dastidar has also already claimed that 20 MPs are with her, and now Mala Roy, one of the closest associate of Mamata Banerjee, she has been seen with Mamata Banerjee a few days back, and now she is in Delhi and she is likely to join the rebel camp.
0: All right, we continue to track the developments coming in on the implosion of the TMC. For the moment, many thanks for getting us the latest details on Mala Roy. With that, it is time for us to sip into a very short commercial break. On the other side, our special segment In the Club, where you get to watch all that is making news in the world of entertainment. Stay tuned to India Today.

0: plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
6: तीसरी सीट का चुनाव होता तो भी हम जीतते हो। मैं बोलता हूं कम से कम 20 से 25 विधायक क्रॉस वोट करते। कांग्रेस ने अपनी फेस सेविंग के लिए किया और मुझे लगता है कि अब नाचना अभी आगन टेढ़ा, इल्जाम चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर पर लगा रहे हैं, हम पर लगा रहे हैं। हमें क्या जरूरत है, हम क्यों करेंगे? और फॉर्म आपने भरा, हमने तो नहीं भरा, आपने क्यों गलत फॉर्म भरा?
7: भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए?
8: जी,
7: कहाँ से आए हमारे?
8: तेलंगाना से।
7: कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं।

0: अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में आने वाले चुनाव में अपनी हार को देखते हुए आज बड़ा ही साजिश भरा एक बयान दिया और हिंदू सिखों को बांटने का और दंगे कराने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्वीट में कहा ईडी हिंदू व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसका मकसद क्या है? जैसे उन्होंने दिल्ली में कहा था कि यमुना जी के अंदर बीजेपी ने जहर डाल दी ताकि आम आदमी पार्टी के वोटर पानी पी के मर जाएं, इस तरह का दंगा भड़काने की उन्होंने दिल्ली में चुनाव में भी कोशिश की थी और अब पंजाब में भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं वहां की पंजाब पुलिस की और डीजीपी से तुरंत अरविंद केजरीवाल जी और जिन्होंने इस ट्वीट को फॉरवर्ड करके भगवंत मान जी जैसे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके आगे चलाया है, इनके ऊपर दंगे भड़काने एक शांतमय प्रदेश के अंदर आग लगाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
1: हिंदू व्यापारी जो हैं वो सब समझते हैं पंजाब को इन्होंने लूट लिया, पंजाब को इन्होंने खत्म कर दिया जो मौजूदा सरकार है। आप नशे की बात करते हैं, चिट्टे की बात अभी कर रहे थे, तो चिट्टे की बात और नशे की बात इनके खुद आप क्या करते हैं स्टेजों पे जाकर असेंबली में जाकर, वो आप किसकी बात कर रहे हो? केजरीवाल जी की बात कर रहे हो? पंजाब को लूट कर खा गए। ईडी की रेड में कह रहा हूँ कि कानून की प्रक्रिया है, जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पंजाब को कौन लूट रहा है? पंजाब को ये आम आदमी पार्टी जो पैसा सेंटर से आता है उसकी लूट होती है, एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है, पंजाब के लोगों में नहीं भरता है।

0: देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है। बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहां से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है। क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था
1: जी।
0: हाँ, जहां विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए। जो आपका नहीं है उस पे क्यों बैठे रहे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है
1: जी।
0: और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है। तो आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा से मिल के आई हूँ। और देखिए, अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहती हूँ, वो तो पार्टी का डिसीजन होता है, मेरा डिसीजन तो नहीं होता। सो लेट अस सी, बट आई फील सी आई एम अ लेडी शुड नेवर गिव हर एज, बट आई एम 53, यू कैन गूगल एंड सी। सो अगले 5 साल तो शायद बीजेपी रहेगी आसाम में। हाँ, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बराक वैली में स्पेशली किया है, क्योंकि मैंने तो राजनीति बराक वैली आसाम में किया है, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ डिवेलपमेंट इन द पास्ट। अतीत में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जो हमारी बहुत बड़ी समस्या, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलती थी।
2: ने बहुत अच्छे से आपको विस्तार में कह दिया है। माँ माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल माँ माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था, और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: He has a first name. I was surprised too.
3: A wedding on the horizon. A mystery in the shadows. And now a dark chapter awaits in the world of Enola Holmes.
2: I understand you may need some explanation as to how this all began.
3: Reprising her role as the chop-fitted young detective, Millie Bobby Brown returns as Enola Holmes. Though this time she appears to be navigating far more than just another investigation.
2: I've spent the last 6 years making myself feel worthy of the Holmes name. Would I now be giving that up? I do.
4: Lady Enola Tewksbury.
2: It doesn't sound right. I don't know. Can I love him without losing myself? Which brings us back to the morning of the wedding.
3: Set against the backdrop of Malta instead of London, the upcoming chapter is expected to follow Enola as she finds herself pulled into what is being described as a most tangled and treacherous case yet. With romance, conspiracies and mystery unfolding side by side.
5: I imagine this moment.
6: It is up to you to find my favorite child.
2: Favorite?
6: Have you met Sherlock?
2: You do not think me capable.
6: On the contrary, I think you're extraordinary.
3: Meanwhile, the franchise first found major success with the 2020 release of Enola Holmes.
2: Which backwards spells alone. Which
3: introduced audiences to the teenage, younger sister of the famed Victorian-era detective Sherlock Holmes, based on Nancy Springer's popular book series.
2: Which leads me on to the second thing you need to know.
7: Arvind Kejriwal ji ne Punjab mein आने वाले चुनाव में अपनी हार को देखते हुए आज बड़ा ही साजिश भरा एक बयान दिया और हिंदू सिखों को बांटने का और दंगे कराने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्वीट में कहा, ईडी हिंदू व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसका मकसद क्या है? जैसे उन्होंने दिल्ली में कहा था कि यमुना जी के अंदर बीजेपी ने जहर डाल दी ताकि आम आदमी पार्टी के वोटर पानी पी के मर जाएं, इस तरह का दंगा भड़काने की उन्होंने दिल्ली में चुनाव में भी कोशिश की थी और अब पंजाब में भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं वहां की पंजाब पुलिस की और डीजीपी से, तुरंत अरविंद केजरीवाल जी और जिन्होंने इस ट्वीट को फॉरवर्ड करके भगवंत मान जी जैसे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके आगे चलाया है, इनके ऊपर दंगे भड़काने, एक शांतमय प्रदेश के अंदर आग लगाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
8: हिंदू व्यापारी जो हैं वो सब समझते हैं, पंजाब को इन्होंने लूट लिया, पंजाब को इन्होंने खत्म कर दिया जो मौजूदा सरकार है। आप नशे की बात करते हैं, चिट्टे की बात अभी कर रहे थे, तो चिट्टे की बात और नशे की बात इनके खुद आप क्या करते हैं, स्टेजों पे जाकर, असेंबली में जाकर, वो आप किसकी बात कर रहे हो? केजरीवाल जी की बात कर रहे हो? पंजाब को लूट कर खा गए। ईडी की रेड में कह रहा हूँ कि कानून की प्रक्रिया है, जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पंजाब को कौन लूट रहा है? पंजाब को ये आम आदमी पार्टी, जो पैसा सेक्टर से आता है उसकी लूट होती है, एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है, पंजाब के लोगों में नहीं भरता है।
9: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ममता बनर्जी का भी अब धर्म संकट बन गया है, क्या वो अपने पार्टी को बचाए या परिवार को बचाए, भतीजा को बचाए? तो लग तो रहा है कि उन्होंने फिर से जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग किया है, आपका नाम उसमें नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना के रखा है, तो क्या उनके वजह से पार्टी टूट रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम अभिषेक बनर्जी को लेकर है, ये तो सच बात है, और आपने क्लोजली उनके साथ काम किया।
1: देखिए, मेरा अभिषेक बनर्जी का जो डिसीशन है, पॉलिटिकल डिसीशन, जो लोग बोले उसके वजह से हारे हैं, मैं ये भी मानती हूँ उसके वजह से जीते भी थे, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल डिसीशन लेना उसी टाइम सही लगा, और उसी टाइम वो इंटेलिजेंट भी है और वो कूल भी है, और मतलब वो डिसीशन ले सकते थे।
0: लेकिन करप्शन का आरोप तो उनके खिलाफ भी है।
1: लेकिन जो है मेरे मेरे मेरे मुझे लगता है ये जे उनका ये डिसीशन गलत, ये मैं नहीं कहूँगी, हारने का अलग हो सकते, लेकिन उसका लाइफस्टाइल गलत है।
0: जैसे
1: वो एक पॉलिटिकल लीडर और एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर बनके भी जैसे लाइफस्टाइल वो चलाते थे, मतलब उसका जिंदगी जैसे चलाते थे, वो गलत है।
0: मतलब तृणमूल कांग्रेस का जो मतलब है ग्रास रूट के साथ मिलना, वो नहीं हो रहा।
1: ममता बनर्जी जितना, ममता बनर्जी का यूएसपी है, टीआरपी है, उसका सिंप्लिसिटी, उसका सिंपल रहना, सिंपल चलना, वहाँ से वो निकल के बाहर आ गए, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी रीजन हो गया अभिषेक के ऊपर गुस्सा करने का लोगों का, और करप्शन तो है ही सब में।
2: As I said it in my opening speech, the company will have equal number of AI workers. We call them AI agents as there are employees. If the company has 500,000 employees, the day is not far when the company will have 500,000 AI agents. So the question will be, what all can be done by agents? And those things will be done by agents. And

मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं। जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। ।2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं, कल जो गरीब था, आज जो नियो मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते, हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। भारत का युवा, भारत की नारी शक्ति, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के किसान, सबकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस

के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, आज पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के सिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे, आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर वन देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था, आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी, आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था, आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी, आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए,
हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई है। सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई है। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई है। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। यह सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथियों, कल के विस्तृत भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं, हमने हर फ्रंट पर काम किया है। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था।
जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब सामान्य मानवी के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती थी। लेकिन हमें मिडिल क्लास की परेशानियों को समझा, हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आज देश में सरल और फेसलेस टैक्स सिस्टम है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीते 12 वर्षों में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर बने हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो सके, सरकार इसमें भी मदद कर रही है। घर में इलाज के खर्च का बोझ कम हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में बिना आय सीमा के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा लाभ देश के मध्यम वर्ग को हुआ है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हुआ है, उसके सपनों से जुड़ी चीजें सस्ती हुई है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश का मिडिल क्लास अनिश्चितताओं से मुक्त हो रहा है। वो भरपूर आत्मविश्वास के साथ देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है। साथियों, हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है, दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी, हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते, हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था, हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। साथियों, महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, बीते 12 वर्षों में देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए
उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है। हमें यह समय गंवाना नहीं है और मैं बार बार कहता हूं यही समय है, सही समय है। सच हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। अब जैसे एनर्जी सिक्योरिटी है, बीते 12 वर्षों में हमने ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए अभूतपूर्व काम किया। मैंने लाल किले से समुद्र मंथन अभियान की घोषणा की थी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। बीते दिनों में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन को लेकर काफी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, यानी आने वाला समय अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है और हमें हर संभावना का पूरा फायदा उठाना है। साथियों, अब हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है। सोलर एनर्जी को लेकर तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल करना है। अभी हमने दुनिया को दिखाया है कि भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच गया है। ये टेक्नोलॉजी हमें न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी और ये नाम बनना पक्का है। साथियों, आज बड़े एक्सपर्ट्स का भी अनुभव है कि जिन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम पर 80-90 के दशक में काम किया उन्हें उसका फायदा इस सदी में मिलना शुरू हुआ। भारत ने 10-12 वर्ष पहले जिस इकोसिस्टम पर काम करना शुरू किया उसका लाभ अब देश को मिलना शुरू हो गया। 2014-15-16 के कालखंड में जो बात नींव डाली गई उसके फल अब दिखाई देने लगे हैं। भारत तेजी से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, एनर्जी, मिनरल्स, चीप बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ये भारत की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हर प्रकार की सिक्योरिटी से जुड़े विषय है। और तभी भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर इतना फोकस कर रहा है, तभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर मिशन बोर्ड पर काम चल रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है।
हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्तों। साथियों, ये सदी टेक्नोलॉजी की है, डेटा की है। आज विश्व के सबसे बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर्स भारत में बन रहे हैं। यही भारत की ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन का मजबूत पिलर बनाएगी। हमने यूपीआई के माध्यम से दुनिया को दिखाया है कि भारत कम से कम और कम से कम समय में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार कर सकता है। हमने दिखाया है कि हमारे युवाओं का सामर्थ्य क्या है। अब एआई, डीप टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे युवा नया दमखम दिखाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में दो और सेक्टर्स में भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया देखेगी। ये सेक्टर हैं टूरिज्म और स्पोर्ट्स। ये दोनों भारत की इकोनॉमी के मजबूत पिलर बनेंगे। विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट के मामले में भारत एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने के लिए अब पूरी तरह सज रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। साथियों, आने वाले समय में भी इसी जनविश्वास और जनभागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। हमें हर राज्य, हर शहर, हर गांव को जोड़ना है। अब समय आ गया है कि राज्यों के बीच नई प्रकार की तंदुरुस्त स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा हो।
स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनता है, स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा शहर इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र बनता है, स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन में सबसे आगे निकलता है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली है। आइए अगले दशक को उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठता का भी दशक बनाएं। आइए राजनीति की स्पर्धा से ऊपर उठकर विकास की स्पर्धा को राष्ट्रीय संस्कार बनाएं। 12 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की रही है, आने वाले वर्ष और भी नई सिद्धियों के होंगे, और भी बड़ी सिद्धियों के होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं फिर से अंतःकरण पूर्वक आपके साथ सहयोग समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद ने हमें ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है। ये जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हुए आइए एक नए विश्वास के साथ हर संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को जुटाते हुए हम चल पड़े। देशवासियों के सपनों को हमारे संकल्प बनाए। हमारा पल पल देशवासियों के संकल्पों की साकार करने की यात्रा का अहम पड़ाव बनता चले, इसी भावना के साथ देशवासियों के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए आओ निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: NDA marks bemisal 12 years. Pradhan Sevak thanks 140 crore Indians.
1: Desh ki janta ne rashtriya star par rajneetik sthirta ka mahatva samjha hai. Desh ki mahaan janta ko bhi naman karta hu. जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
0: ग्रोथ गवर्नेंस ग्लोबल स्टेचर.
1: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है. यही समय है, सही समय है.
0: प्राइम मिनिस्टर टारगेट्स कांग्रेस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ.
1: कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया. विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया.
0: Modi's roadmap to Viksit Bharat 2047. Sabka Saath, Sabka Vishwas in 2029 too. ...4,399 consecutive days as Pradhan Mantri and Pradhan Sevak. And now a historic milestone. Prime Minister Narendra Modi has become India's longest continuously serving elected Prime Minister. Surpassing the record of 4,398 days held by India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. 12 years of governance, 12 years of transformation, 12 years of turning promises into policy and policy into delivery.
2: मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं. चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था.
0: From digital India to Atmanirbhar Bharat. From financial inclusion to world-class infrastructure. From welfare outreach to making Bharat a Vishwaguru. This is the story of a nation that has steadily converted aspiration into achievement. The milestone was marked with a standing ovation at the cabinet meeting.
3: आज का जो ये दिन है, हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है. मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूँ कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है.
0: As ministers applauded the Prime Minister for completing 12 years at the helm of the NDA government. For the NDA, it was a double celebration. 12 years of governance and a record-breaking tenure for its tallest leader, coinciding with the NDA government's 12th anniversary. The achievement was commemorated at a high-level conclave at Bharat Mandapam in New Delhi. Leaders across the alliance joined in the celebrations. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu moved a resolution felicitating the Prime Minister on the historic occasion.
4: The right leader at the right time at the right place, Narendra Modi ji, as Prime Minister of this great nation, that is his strength. He is both our anchor and our innovator. Working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us has constantly keep it in mind. Never I have seen him as tired for the last so many years. Always he is energetic. Not only energetic, he will give energy for others.
5: एक समय था जब देश की प्रगति का मूल्यांकन आजादी से पहले और आजादी के बाद के आधार पर होता था, लेकिन आज देश में एक नई सोच स्थापित हुई है। अब लोग कहते हैं 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। यह परिवर्तन अपने आप नहीं आया, इसके पीछे दिन रात काम करने वाला नेतृत्व है।
0: And amid the celebrations, a familiar image once again caught everyone's attention. Prime Minister Modi was seen sharing jhalmuri with fellow leaders at Bharat Mandapam. A simple moment that reflected the ease and camaraderie behind a landmark political journey. Three terms, one leader, many milestones. Yet for Prime Minister Modi, the journey is far from complete. He says it is the faith and trust of 140 crore Indians that continues to inspire him every day.
1: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
0: For Narendra Modi, this record is not the finish line, nor is it the defining achievement. Because as he sees it, the true test lies ahead in transforming the dream of Viksit Bharat into reality by 2047.
1: विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। यही समय है, सही समय है।
0: Records may define leaders, but legacies define eras. And Narendra Modi's legacy will be measured not by the days he served, but by the India he leaves behind. Bureau Report, India Today.

0: In these 12 years, Linear India has transformed into Digital India, revolutionizing how Indians transact. Unified Payment Interface, or UPI, the world's most advanced digital payment system, now covers every corner of India. In December 2025 alone, UPI processed a record 21.63 billion transactions worth 27.97 trillion rupees. In financial year 2025, UPI captured 83.7% of all digital transactions, processing 261 trillion rupees. Bihari started to use UPI to receive payment at his tea stall in Patna when the COVID pandemic hit the world. Social distancing forced people to skip cash and opt more and more for digital cashless payment.
1: नहीं डिजिटल कोई देता नहीं था और हम लोग ले ही नहीं पाते थे वो तो खुदरा का झमेला उस गरीब ही था अब तो हो गया कि कम से कम डिजिटल चल रहा है तो ये तो है कि किसी के पास पैकेट में पैसा रहे ना रहे मोबाइल से काम हो जा रहा है कोरोना के बाद समझिए कि पैसा आदमी यूज करना ही छोड़ दिया है मतलब मोबाइल से ही ज़्यादा यूज करता है
2: आज आपको कोई अगर नोट दे देता है 10 रुपए की चाय पिया और अगर 50-100 रुपए का नोट दिया तो खुला होता है आप लोग के
1: नहीं बहुत दिक्कत होता है खुला के लिए तो समझिए कि अंतिम में हम लोग को पैसा छोड़ना पड़ जाता है
2: ये हालत हो गया है
1: अभी
2: एक चीज और बताइए जैसे बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी या है कि नहीं आप लोग का पेमेंट होता है अटक जाता है ऐसा तो नहीं हो जाता कि अगर पेमेंट हुआ फंस गया नेट नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा
1: नहीं ऐसा तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है क्योंकि जब भी होता है तो अपना इसीलिए मैंने दोनों दो बॉक्स रख लिए हैं कम से कम दो बॉक्स में ये है अंदाजा कि आपका जैसे कि पेमेंट आ गया तो वो बोलेगा अगर नहीं आया तो बोलेगा ही नहीं
2: I've just had my cup of tea and now I need to make payment for this. Bihari ji, 2 cup chai ka kitna ho gaya?
1: 2 cup chai ka 24 rupaye ho gaye.
2: 24 rupaye ho gaye. Chaliye main let me now make this payment through my digital platform here. चलिए तो मैंने 24 रुपए का पेमेंट कर दिया डिजिटल से मिल गया आपको
1: बिल्कुल मिल गया सर
2: मिल गया है ये आपको लगता है बड़ा इजी है बड़ा आसान है ये तरीका पेमेंट का
1: हाँ ये बहुत इजी है और दूसरी बात के टेंशन नहीं रहता खुदरा का नहीं तो 100 रुपए का नोट अगर आदमी दे देता है तो 10 दुकान हमको भजाने में देरी होता है
2: फिर एक कप चाय 12 रुपए का 24 रुपए का फिर खुदरे में दिक्कत
1: 24 रुपए में तो खास करके ज्यादा दिक्कत हो जाती है
2: There you see, I've just had a cup of tea here and 24 rupees that I've paid for 2 cups of tea and I've made this payment through this digital platform and Bihari, this tea seller, is also happy with the fact that he doesn't have to worry about giving change if somebody gives a currency here and that is why we are seeing in India, especially in states like Bihar, In urban and rural parts also, digital penetration has increased extensively.
0: From Patna to Jaipur, life works seamlessly on UPI.
3: In the new digitized India, one thing has grown in leaps and bounds. It is the UPI payment or payments made online. Millions of transactions get made through the use of phones which people carry and make payments for traveling in buses, for paying to vendors. And we are right now in a local bus on an arterial route in Jaipur. And you can see all of these people who are traveling. In fact, most of the people carry phones with them and can make use of online transactions to carry the payment for which they want to make for the travel that they do. Kya naam hai aapka?
4: Rajkumar.
3: राजकुमार ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप
4: जी
3: रोज कितने पेमेंट्स करते होगे ऑनलाइन
4: जी ज्यादा नहीं 100-200-500
3: हो जाती हैं 100-200-500 की और आप ये फोन दिखा रहे थे आपने आज की पेमेंट से क्या आपकी
4: जी ये जो है किया है अभी ऑनलाइन लिए हैं पेमेंट
3: और बस में ट्रैवल करने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट करते?
4: नहीं नहीं, बस में तो कैश देते हैं।
3: वैसे करते हो आप ऑनलाइन?
4: जी।
3: वेल, इन द बस दैट वी आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, दिस इज अ लोकल बस व्हिच फ्लाइज ऑन द टोंक रोड इन जयपुर सिटी, एंड आई ऑल्सो डू हैव द कंडक्टर विद मी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आप लोग एक्सेप्ट करते हैं बस में?
5: हाँ, करते हैं सर।
3: और कितनी, मतलब जो आपकी टोटल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी कितनी परसेंटेज ऑनलाइन होती होगी?
5: ऑनलाइन कोई फिक्स नहीं है, कभी कितना आ जाता है, कभी 200 आ जाता है, कभी 300 आ जाता है, कभी 500 आ जाता है।
3: पर वो ऑप्शन आप लोग देते हैं पैसेंजर्स को कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर सके?
5: कर सकते हैं।
3: द ड्राइवर इज राइट नाउ ऑल्सो ओवर देयर। क्या नाम है आपका सर?
6: मोहनेंद्र सिंह।
3: आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं?
6: हाँ।
3: और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो ऐसे कितने पैसेंजर्स होते होंगे जो ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे?
6: ऐसे एक चक्कर लगाते हैं उसमें कम से कम 10-12 लोग तो आते हैं।
3: तो आपको लगता है जब, अगर मान लीजिए छुट्टे पैसे नहीं हो, वो कन्वीनियंट रहता है ऑनलाइन पेमेंट करना?
6: करवा लेते हैं, करते हैं।
3: तो जो फेयर है वो 10-15 रुपए का ही होता है?
5: 10-15-20
3: ऑनलाइन करते हैं पेमेंट लोग। Well, so this is one thing which is very convenient, because if someone is not carrying a short change or cash with them, then online payment option is one option which is readily available and is made use of. And in fact, this is one mode of payment which has grown in leaps and bounds in the last 12 years during the Narendra Modi government's tenure at the center.
0: The local shop selling essential grocery and tea also thrives on cashless payment.
3: This is a tea shop where every day hundreds of people come to buy tea, various products from this shop. The shop owner is with me right now. Kya naam hai aapka?
7: Babulal Saini.
3: Babulal ji, ye bataein ki kitne log aate honge rozana jo online ke zariye, UPI ke zariye payment karte chahiye?
7: 300 aate hain, 300 ke lagbhag aate hain.
3: वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, फायदे की चीज है? मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह आपने QR कोड।
7: ऑनलाइन से तो ये फायदा है, भीड़ नहीं लगती फटाफट, UPI से पैसे हो जाता है, खुले देने लेने के झंझट खत्म हो जाती है।
8: एक चीज तो ये हो जाती है कि अपना एक तो जो जेब कतरे होते थे पहले, उनका काम थोड़ा कम हो गया है, और थोड़ा सा सेफली पेमेंट हो जाता है। हाँ, अटक भी जाते हैं कई बार।
0: फार फ्रॉम द बसलिंग सिटी इन स्मॉल टाउन मुजफ्फरपुर इन बिहार, vegetable vendors to small businesses all run on UPI.
9: 100 rupaye ka sabzi lete hain to mobile se maar ke apna chale jate hain,
10: fayda
9: hua hai.
10: Pehle paisa leke udhar padha le jata, paisa wahi par marta hai mobile se.
0: Chandoli in Uttar Pradesh, nearly all vendors in this village accept UPI payment.
11: 1.5 साल से UPI यूज कर रहे हैं, इससे ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है बहुत आसान हो गया है, इससे हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है।
12: पेमेंट लेने में दिक्कत नहीं
11: होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती।
12: ग्राहकों को भी सुविधा होती है?
11: बहुत ज्यादा, घर से निकल रहे हैं मोबाइल लेकर के हो जा रहा है उनका काम, जो भी लेना चाहते हैं वो सब ले देकर चले जाते हैं।
0: More than 400 kilometers from Narayanpur in Madhya Pradesh's Sioni, digital payment is a normal and accepted form of transaction for daily needs.
13: 4,35 rupees
14: form paper प्राप्त। UPI आने से हम लोगों को चिल्लर की समस्या खत्म हो गई, और पैसे बार बार घड़े आना पड़ता था, तो वो घड़े आने का भी मामला खत्म हो गया है। लोग अब अगर 11 रुपए भी देते तो हमसे 11 रुपए भी ले लेते हैं। पहले होता जाता कि भाई 10 रुपए देते थे, अब हम उनसे 11 रुपए भी ले लेते हैं, और पूरा पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। इससे ये फायदा है, लगभग 60% हमारा UPI से होता है, 40% हमारा कैश होता है।
0: From metro cities to remote villages, UPI has become the backbone of India's digital economy. It's now expanding to 20 nations worldwide.

0: The government's poverty-centric agenda has lifted 250 million people out of poverty in 10 years.
1: देश की हर उस बहन को जिसको धुएं से मुक्ति मिली है बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हैज प्रोवाइडेड 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस विथ 32.94 करोड़ एक्टिव डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स 2.94 करोड़ एक्टिव डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स नेशन वाइड डायरेक्ट ओवर 44 लाख करोड़ डायरेक्टली टू बेनिफिशरीज अकाउंट्स एज ऑफ मे 2025 saving the exchequer 3.48 lakh crore rupees by eliminating middlemen.
2: Main jis ghar mein paida hua bahut hi chhota ek galiyari jaisa mera ghar tha, koi khidki nahi thi, aane jaane ka sirf ek darwaza tha aur maa lakdi ka chula jala karke khana pakati thi. Kabhi kabhi to dhuan itna hota tha कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं.
0: The system removed 4.23 crore fake LPG connections. This has brought smiles in kitchens across the country. Free LPG connection in BPL families in Saharsa, Bihar is nothing short of bounty for the lady of the house.
3: पहले जैसे कि चूल्हा पे खाना बनाते थे बच्चा को भी टिफिन नहीं दे सकते थे. जब से ही जो उजाला गैस हमको मिला है तब से बहुत ही सुविधा है, जो मैं कि बच्चा सबको भी स्कूल भेज देते हैं, हम भी ड्यूटी पे चले जाते हैं.
4: ज्यादा पड़ता था धुआं से, बहुत परेशानी होती थी, लकड़ी भी तो टाइम से उतना नहीं हो पाता था. हम लोग को बहुत राहत मिला है जब से उज्ज्वला गैस मिला है. टाइम से बच्चे को खाना दे पाते हैं, नहीं तो पहले लकड़ी पे बनाना पड़ता था, चुन चुन के लाना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था.
0: चेतन ठाकुर लिव्स इन अ सिंपल मड हाउस इन सुंदरपुरा विलेज इन गुजरात्स खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. द ब्लू फ्लेम ऑफ एन एलपीजी सिलेंडर इज द बिगेस्ट रिलीफ फॉर हिज family of 11.
5: પહેલા કે લાકડા સરગંધ બહુ તકલીફ પડતી હતી, ચોમાં બધા લાકડા પલળી જાય એટલે કસાય કોમમાં ના આવે, એટલે પછી ગેસનું ફોર્મ ભરાઈને આપણે ગેસ કનેક્શન લીધું એટલે થોડી રાહત મળી.
0: પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના લોન્ચ્ડ ઇન 2016 પ્રોવાઇડ્સ ક્લીન કુકિંગ ફ્યુલ ટુ પૂઅર હાઉસહોલ્ડ્સ. Transforming the lives of women in Golagudem village of Khammam district in Andhra Pradesh. It has reduced their dependence on firewood and traditional cooking methods. Rajkumari Ahirwar of Madhya Pradesh's Guna has benefited from the Ujjwala Yojana. She is a self-reliant woman who runs a self-help group. She supports her entire family with the gas cylinders provided under the Ujjwala Yojana and also runs a tiffin center.
6: Pareshani aati thi, dhuan lagta tha, kanda lakadiyan hoti, nalki par dikkat padti thi. Ab Ujjwala mila hai jab se bahut fayda hai. 5 saal se yahi tanki chal rahi hai Ujjwala naam. Subsidy bhi milti hai is pe.
0: One scheme of the government has turned around the lives of many women across the country, brightening up kitchens in million households.
7: Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Swachh Indhan, Behtar Jeevan.

0: Farmers have been the backbone of this transformation envisioned by the Prime Minister over the past 12 years. PM Kisan Yojana has benefited 9.35 crore farmers in the 21st installment alone till November 2025, disbursing over 3.70 lakh crore rupees to 11 crore farmer families. Each farmer receives 6,000 rupees annually. It is the same story from Uttar Pradesh to Punjab.
1: मैं किसान हूँ, मैंने अपने खेत के लिए एक सोलर पैनल लगवा, जब तक धूप रहती है अच्छी सर्विस देता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पानी पानी रहता है, बिजली हो या ना हो इससे किसानों को बहुत फायदा है। सरकार की इस योजना को अधिक से अधिक किसान यूज करें, इसका बहुत बेनिफिट है हमें, लाइट हो या ना हो हमारे खेत की सिंचाई होती रहती है।
2: मेरे फादर नाम दे जमीन आ, उन्होंने 2,000 रुपया आंदा है जी, मुआवजा समय पर मिल रहा, पर जो मेरी जमीन में कोई कोई एडा मार भी पानी की मार नहीं बजती थी, तो उस तरह सरकार वालों सब्सिडी मिलती है, मेरा उन्हें शहरी खाता मैं उन्हें सरकारी स्कीम मिलती हैं जी।

0: ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
1: ਅੰਡਰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਫਾਰਮਰਸ ਸਿਕਿਉਰਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀਜ਼ 12 ਈਅਰ ਗਵਰਨੈਂਸ।
0: ਮੈਨੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅਭੀ ਕੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਮੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸਕੇ ਤਹਿਤ ਮੌਸਮੀ ਫਲਬਾਗ ਲਗਵਾ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਇਸਕੇ ਜੋ ਰੋਪ ਹੈ ਜੋ ਪੌਦੇ ਮਿਲੇ ਉਸਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਨੇ ਜੋ ਇਹ ਨਿਕਲਾ ਘਾਸ ਇਹ ਸਭ ਉਸਕੇ ਵੀ ਉਸਕੇ ਤਹਿਤ ਉਸਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਝੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਾ।
2: ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਔਰ ਨਮੋ ਕਿਸਾਨ ਉਸਕੇ 11-12 हज़ार जो मिलती है वो हमारे बहुत काम में आती है। जिस दिन हमारे पास में पैसे नहीं रहते उस दिन वही पैसे निकाल के हम इसका खेती बाड़ी का काम करते हैं। और हमारा जिला आदिवासी है, दुर्गम है, इसलिए कभी कभी काम नहीं मिलता। वो जो नहीं मिलता उस टाइम वही पैसे काम में आते।
1: The scheme has empowered farmers in Madhya Pradesh, just as it has worked for others in all states.
3: वैसा जो 6000 रुपए आया है उसमें अपन ने लागत भी लगाई है और कुछ सारा मिल जाता है, फल फूल पेड़ों में खाद बीज में भी फायदा मिलता है, खाद बीज खरीद लो मौके पैसे अपने पास ना हो। और बढ़िया काम किया मोदी जी ने, 6000 रुपए दे के हमारे फूल फूल की लक्की गिलकी की फसल हरी भरी हुई है।
1: फॉर वुमेन प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड अनप्रेसिडेंटेड एम्पावरमेंट। 2 crore women have become Lakhpati Didis through self-help groups with a target of 3 crore. Over 10.03 crore women are part of 92.06 lakh self-help groups. Under Mudra Yojana, 68% of loans, over 27 crore, have gone to women entrepreneurs. Under Pradhan Mantri Awas Yojana, urban 90 lakh houses are owned by women.
4: When the government of India gives a support of to develop an industry, automatically the employment is generated. In such cases, skilling, they are ready to help us in skilling. They are also ready to give some sort of funding for the skilling departments. And they also are ready to support in each and every area where you wanted to develop employment.
1: Uttarakhand is one example of women empowerment. Uttarakhand State Rural Livelihood Mission, funded by the central government, aims to empower rural women through self-help groups and provide them with sustainable livelihood opportunities. A total of 1,203 self-help groups have been formed in 140 village organizations.
5: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 75,000 रुपये CIF के रूप में मिला है और 3 लाख रुपये CCL के रूप में बनाया गया है, जिसमें हमने 5 लाख के आसपास अपना पैसा भी लगाया है और जिससे हमने यह उद्यम जोड़ा है।
1: Women empowerment has been the foundation of rural development for the Modi government in the past 12 years.

0: उन ममता बनर्जी का भी अब धर्म संकट बन गया है, क्या वो अपनी पार्टी को बचाए या परिवार को बचा है, भतीजा को बचा है। तो लग तो रहा है कि उन्होंने फिर से जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग किया है, आपका नाम उसमें नहीं है लेकिन अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना के रखा है, तो क्या उनके वजह से पार्टी टूट रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम अभिषेक बनर्जी को लेकर है, ये तो सच बात है, और आपने क्लोजली उनके साथ काम किया।
1: देखिए, मेरा अभिषेक बनर्जी का जो डिसीशन है, पॉलिटिकल डिसीशन, जो लोग बोल रहे उसके वजह से हारे हैं, मैं ये भी मानती हूँ उसके वजह से जीते भी थे, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल डिसीशन लेना उसी टाइम सही लगा, और उसी टाइम वो इंटेलिजेंट भी है और वो कूल भी है, और मतलब वो डिसीशन ले सकते थे।
0: लेकिन करप्शन का आरोप तो उनके खिलाफ भी है।
1: लेकिन जो है मेरे मेरे मेरे मुझे लगता है ये जे उनका ये डिसीशन गलत, ये मैं नहीं कहूँगी, हारने का अलग हो सकते, लेकिन उसका लाइफस्टाइल गलत है।
0: जैसे
1: वो एक पॉलिटिकल लीडर और एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर बन के भी जैसे लाइफस्टाइल वो चलाते थे, मतलब उसका जिंदगी जैसे चलाते थे, वो गलत है।
0: मतलब तृणमूल कांग्रेस का जो मतलब है ग्रास रूट के साथ मिलना, वो नहीं हो रहा।
1: ममता बनर्जी जितना ममता बनर्जी का यूएसपी है, टीआरपी है, उसका सिंप्लिसिटी, उसका सिंपल रहना, सिंपल चलना, वहाँ से वो निकल के बाहर आ गए, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी रीजन हो गया अभिषेक के ऊपर गुस्सा करने का लोगों का, और करप्शन तो है ही सब में।
2: We had met the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Vijay, and in fact, 5 days

0: NDA marks Bemisal 12 years. Pradhan Sevak thanks 140 crore Indians.
1: Desh ki janta ne rashtriya star par rajneetik sthirta ka mahatva samjha. Desh ki mahan janta ko bhi naman karta hu. जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।